सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: काला काला दिल, दिल विल नहीं है ये जानम, ये है मेरा दिल। काली काली आंखों में चेहरा है मेरा, लगता है ओ मेरे दिल पर अब मैं हूँ तेरा।
1: चल चल चल,
0: धक धक धक धक धक धक धक धक धड़के मेरा।

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहाँ चार यार, जहाँ

किला ले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

तेई शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार? मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

0: बावरेनयन या चित्रपटामधलं गीत मुकेश आणि गीता दत्त यांनी गायलेलं. गीतकार केदार शर्मा, संगीतकार रोशन.
1: ये तस्वीर तो मेरी है.
2: नहीं, ये दस की है. हमेशा मेरे ख्यालों में आता है और इससे मैं कहती हूँ

शर्म शर्म तुझको न आई, मेरी जा तेरी जान पर आ बनी है। सुना है कि तलवार

0: अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तो उनको बॉयलर में डाल देगा, तुम लोग इंजन चला देगा।
1: देखो काय लोग, देखो देखो तमाशा देखो, वो हरामखोर मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए। बस चुपचाप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी मारेगा, मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप आकर। एक दिन वो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हें खड़े होकर हटूंगा। उसने मुझे मारा और कोई बचाने भी नहीं आया, ठीक है। मार मार के लहू लुहान कर दिया सारे, काम भी किए जाओ और जूता भी खाए जाओ, ये इनाम मिला है 30 बरस की किस्मत का। देखा हो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे,
2: सोता है बहुत जागा है ना।
1: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको

0: भोले वाले ललुआ, भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग, जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेशी बा।

0: ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बोलो ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है।
1: काश मैं इसे झूठ कह सकता दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
2: बात चीजें इंसान के बस में नहीं होती बेटा, भगवान के हाथ में होती है।

अरे मेरे पास तो ऐसी स्लीपर नहीं थी। ये घर, हमारा घर तो ऐसा नहीं था। ये एक रात में क्या क्या हो गया? वो कह रही थी 4 साल। हर चीज बदल गई है मगर ये जख्म तब भी ताजा है।